नहीं मिलता. इट्स एन उर्दू गज़ल. इट मीन्स दैट नोबडी एवर गेट्स एवरीथिंग. समटाइम्स देर इज़ नो अर्थ, समटाइम्स देर इज़ नो स्काई, इम्प्लाइंग दैट यू कांट हैव इट ऑल. देर इज़ ऑलवेज समथिंग मिसिंग एंड यू हैव टू मेक डू विथ वॉट यू हैव, मेक द मोस्ट ऑफ दैट दैट्स इन योर पोजेशन. So that's the song I will play next, and then I have a few more lined up. I wanna try and play as many as I can. This one is called Kabhi Kisi Ko Mukammal. Mukammal means complete. It's an Urdu word, and really the Q, MUQAMMAL is the word. And a lot of Urdu enunciation emphasizes on the Q really coming from the epiglottis Mukammal. So this is a song. It's in the voice of Ghazal singer Bhupinder Singh, one of the beautiful compositions of his.